0: मैंने लगी डरलेन एन बिनी रशियन लगी को
1: मैंने लगे बिलिंगो की कहा लयो रखे मुनी एन बिनी रशियन लक्सी ओकर